और सर मैंने इस बार मैं एक्चुअली खबरों का इंतजार कर रही थी, खबरें कहीं और चली गई, कोई बात नहीं, हम आपके लिए कितनी खबरें लेकर आए हैं। खुश आमदीद दिन के दूसरे प्रोग्राम बेमिसाल अंदाज में। समझ ये है पूर्वी एफएम मशरकी एफएम। आज क्या देखना है समिन? आज देखना है कैसे दुनिया में आते ही बच्चों की मौत हो गई। अभी चंद दिन के बच्चे थे, चंद माह के बच्चे थे, बड़ों की गलतियों की वजह से बच्चे गए हैं। दिल खराश वाकया पाकिस्तान में हुआ है, मैं आपको जगह भी बताऊंगी कि कहां हुआ है। फिर भारत में क्या चल रहा है, रक्षाबंधन को लेकर बना एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन हटा दिया है, पूरा मुकम्मल हो चुका था लेकिन हटा दिया ज्वेलरी स्टोर ने वजह के साथ। आप इत्तफाक करते हैं या नहीं वो मुझे आप बताएंगे कि वजह जो भी है, जो है एक ही वजह है, उसके साथ आप इत्तफाक करते हैं या नहीं, इख्तलाफ करते हैं तो वो भी हमें बताएं। आपको लगता है कि नहीं ये गलत था या सही था, वो आपने 0701 106 106 पे हमें बताना है। हम चलते हैं फिल्म हम दोनों

0: सर आपको मैसेज करने के चक्कर में दूध उबल गया और फिर गिर भी गया, निकल भी बह निकला। ओके बहुत खूब। और चंद्रिका
1: हो गया, बहुत मजा आ रहा है, काम करने भी ऊर्जा मिलती है आपका गायन सुन के। थैंक यू वेरी मच चंद्रिका वसंत गोसाई।
0: आपने कहा है, काम के लिए ऊर्जा मिलती है, एनर्जी यानी तवानाई मिलती है। मुझे लगा काम करने को जी नहीं चाहता, इतने अच्छे गाने हैं, लेकिन नहीं, आप कहते हैं काम भी चल रहा है। डियर यू हैव गिवन द राइट आंसर, इट इज चारकोल कोल। मिसेस धंजल वाके अजय पाल का जो सवाल का जवाब था। रितु गुप्ता ने कहा है कि बत्ती लाइमस्टोन है, 1000 लोग मर गए हैं, चल बसे हैं। ये कहाँ है हुआ रितु? कुड बी आग सना और अमीर अली राना। मदर अर्थ इज टायर्ड ऑफ बीइंग अब्यूज्ड एंड नाउ इट इज रिमाइंडिंग पीपल एंड बिग बिजनेसेस दैट इट इज रिमाइंडिंग अस हु इज इन चार्ज ऑफ दिस प्लेनेट। बिल्कुल अमीर अली राना। इन नेपाल मोर देन 1000 पीपल हैव डाइड, या यही कहना था मेरे ख्याल से रितु गुप्ता ने भी, और यही कहा है शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। चलिए समय आगे देखते हैं कि हमारे लिए क्या है।

हैं, ये अताउल्ला खान ईसा खेल भी हैं, पाकिस्तान के माया नाज सिंगर हैं और इमरान खान साहब के हिमायती हैं। अब मैं आपको बताऊं, समय रक्षाबंधन कल है, एडवर्टिजमेंट्स बन चुके हैं यानी विज्ञापन, हर कोई इस त्यौहार को लेकर अपना अपना बिजनेस जो है उसको मार्केट कर रहा है। तो एक में कृति स्नोन, समझ, बड़ी अच्छी अदाकारा है, बहुत खूबसूरत है, उस पे बना है एक एडवर्टिजमेंट। तो आप कुत्ते के साथ, अपने पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता, उसके साथ दिखती हैं एडवर्टिजमेंट में, मगर जो लिबास पहना हुआ है कृति ने, इसकी बड़ी तनकीद हुई है कि इसने तो कुछ पहना ही नहीं हुआ, जैसे निंदा हुई है, लोगों में गुस्सा है। और जिस जौहरी ने इस एडवर्टिजमेंट में कृति को लिया, उसने इस एडवर्टिजमेंट को हटा दिया है। कहते हैं लोगों ने कहा कि ऐसा घटिया लिबास है, पवित्र जो है त्यौहार उसके लिए नहीं दिखाया जा सकता ये। तो कहते हैं कि बिकिनी पहनकर, ऐसा तो लगता है जैसे कि बिकिनी पहनकर कौन सी भारतीय लड़की भाई से राखी बंधवाएगी। ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया है किसी ने भारत में, कि कौन सी भारतीय लड़की है जो कि अपने भाई से जाएगी राखी बंधवाने और उसने ये पहना होगा जैसे कि एक बिकिनी हो। टू रिवीलिंग, इट्स इनअप्रोप्रिएट कहा गया है। यही नहीं, कृति फिर कुत्ते को राखी भी पहना रही है। समीन, कुत्ते को राखी पहनाने का जवाज नहीं दिखता। खैर, इस सब में राहुल गांधी ने कहा है कि जो चाहे औरत पहने, कहां पहने वो भी तो सोचो, क्या कहां पहने, इनकी मर्जी, ये कहा है, जो भी चाहे, कृति के सवाल पर। अब महिलाओं को बताना बंद करें वो क्या पहनेंगी, ये कृति ने कहा है, हमें बताना बंद करो। और लिबास का रिवायतों के साथ क्या ताल्लुक है, ट्रेडिशंस, समझ, सारा ट्रेडिशन तो लिबास का है, लिबास का रिवायतों के साथ तो बिल्कुल ताल्लुक है, सब ट्रेडिशंस लिबास से जुड़ी हैं। पर समन कहते हैं कि परंपरा जो है, कल्चर आपका, ये कृति ने कहा है, दिल में होता है, सीने में नहीं। तो दिल भी तो सीने में है। आई मीन, लोग पता नहीं किस तरह से बात करते हैं, पर आप मुझे बताएं कि क्या इतना कम लिबास पहनकर रक्षाबंधन का एडवर्टिजमेंट बनवाना ठीक था या नहीं। 07011106106

0: कमर है फिर की नजर है, पतली कमर है फिर की नजर है।
1: हम बात करें रक्षाबंधन की और किस तरह का लिबास आप पहन कर जाएंगी अपने भाई से ये रक्षा मन लगवाने के लिए हाथ पर। तो समझ ये बात है कि अगर आपने इनअप्रोप्रिएट ड्रेस पहन रखा है तो घर वाले क्या कहेंगे, उनको कैसे महसूस होगा ये देखना है। ठीक है, सलमा अहमद नातू जमीन के लिए है। अच्छा, वो दीदार सिंह परदेसी की आवाज़ में हमारे पास नहीं है, जिस आवाज़ में है किसी दिन वो भी कर देंगे। अमीर अली राणा, इफ टुडे इज मुकेश डे देन कुछ शेर सुनाता हूँ मैं। उफ, ब्यूटीफुल उनका नगमा। ओके, कुछ शेर सुनाता हूँ मैं। और यूसुफ भट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी कॉल किया। और भास्कर पटेल फ्रॉम मैनचेस्टर यूके, सभी को ग्रीट करते हैं, बेमिसाल के लिसनर्स को। और जो कहा है हमें कल्पना ने वो बाद में मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि कॉप बहुत अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लायक।
2: It's 11:21.
3: We unlocked Gavar for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
4: Kenya's premier Asian mix continues.
5: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: क्या कमाल का गाया, और कंपोजर ने भी तो जबरदस्त म्यूजिक दिया है, अमीर अली राना। बड़ी अच्छी फरमाइश थी आपकी शनाज भट्ट, तंजानिया आप सुन रहे हैं। और आप कल्पना ने जो लिखा है, कहते हैं दे आर टू थिंग्स दैट रिप्रेजेंट हिंदू फेस्टिविटीज, जो त्यौहार मनाते हैं हिंदू लोग, दो चीजें होती हैं, एक ट्रेडिशनल अटायर। सामने एक्ट्रेसेस की बातें सुनकर इंसान सोचता है कि किस आईक्यू की खवातीन को भर्ती किया जाता है एज एक्टर्स। जैसे कि कृति ने कहा है कि लिबास का क्या लेना देना है, ये लो। और आपने कहा है कल्पना कि दूसरी चीज एक बिंदी है, या कुमकुम या तिलक, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। If these two are not there, it's inappropriate. In the past, there was a campaign called No Bindi, No Business, started by strong advocate of the Hindu tradition. The hoardings and advertisements of jewelry, clothes and mithai during Diwali showed models with no bindi. This campaign worked wonders and businesses had to redo their campaigns. No bindi, no business. Showed models with no bindi. In fact, they should have shown the. इसका मतलब है कि उन्होंने बिंदी के साथ दिखाया है models को. Okay, thank you all the same for sharing this with us. और कौन आए हैं हमारे साथ, कौन है?
1: नमस्कार, प्रवीण जी, ये जो news है ना, ये social media पे बहुत viral हो रही है. प्रवीण जी आप बताओ, औरतों के लिए या किसी के लिए भी ये कुछ मर्यादाएं होती हैं, हैं? अगर ये बोलते हैं नहीं, पप्पू बोल रहा है कि वो जानिए राहुल गांधी, औरतें कुछ भी पहने, आप बताओ, बिकनी पहनकर कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने जाएगी? आप बताओ, हमारे टाइम तो फादर जो होते थे अपनी बेटी को हग करना भी शर्म फील करते थे, यानी भाई भी अपनी बहन को इतना मतलब ऐसे जफियां नहीं डालते थे, मतलब सिर पे आशीर्वाद दे देते थे. चलो आज का समय फिर भी चेंज हो गया है. और ये देखो राहुल गांधी जो पप्पू उसको बोलते हैं, अपनी बहन प्रियंका को भी कैसे ये इतना हक करके वो उसको किस कर रहा है. मेरे हिसाब से तो कोई भाई ऐसी बहन को नहीं कहता. ये ओपोजिशन पार्टी है ना, ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, बहुत बहुत गंदे वर्ड है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बहुत यूज करता है. अगर नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री को टॉफी दी थी मेलोनी को, तो कैसे इसने पार्लियामेंट में भी कैसे ये इसने हंगामा उठाया था, एक आदमी से ऐसे एम्ब्रेस करके बताया था. तो आप बताओ, ये खुद बड़ी औरतों की कदर करता है. ऐसे मेरे को तो इतना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ना ये बातें बहुत गंदी लगती हैं, कोई भी एक दूसरे के बारे में ऐसे बोले. और ये देखो कुत्ता लेके एड दे रही है और बिकनी पहन के रक्षा बांध रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है. बाकी दूसरे लिसनर की भी राय ले लीजिए. रितु गुप्ता.
0: बिल्कुल रितु, जो आपने कहा है कि बिल्कुल सही है, सब इतने कम लिबास में, और फिर कुत्ते का क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में. ये जो जवान, वो जो डायरेक्टर है इस एडवर्ट का, जवान आदमी है, ये क्या सोच रहे हैं, इनकी अकल क्या घास चरने चली गई है. आपको अगर नहीं दिखाना कि जो एक्ट्रेस है उसने लिबास पहना हुआ नहीं दिखाना, तो ठीक है, उसको किसी और एडवर्टाइजमेंट में रखें बगैर लिबास के. लेकिन रक्षा का क्या है इसमें? रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है, पुराने ज़माने से आ रहा है, उसकी कोई इज्जत है, उसका एहतराम करना सीखो. तो समझ, जो ज्वेलर है उसने तो हटा लिया, वो भी ठीक किया, लेकिन बनाया ही क्यों? परवीन जी, रसीला ने कहा, इट्स नॉट राइट, ट्रेडिशंस नीड रिस्पेक्ट, श्योरली व्हाट इज रॉन्ग, What's wrong? So inappropriate and disrespectful. आप कह रही हैं कि inappropriate है कि नहीं है? Surely, what's wrong? What does that mean? Rasila, अपने अपने जो है ना views, एक और बार लिख कर भेजें. सना, According, it's good. It's not good to advertise on traditional day. Should wear classic suit. Okay, theek hai. Ameer Ali Rana. Parveen ji, thank you for playing the song. I think this song one of the best of Mukesh. I agree. Salma, jo Salma ne kaha hai, aage thodi der ke baad.

0: मैंने आपके लिए फसीहा कुरैशी ने एक स्टूडेंट कार्ड भेजा है, आगे मैं मैसेज ही पढ़ती हूँ, पर वो आप फसीहा कुरैशी मायामी में हैं और जो कार्ड हमें भेजा है वो है शहबाज शरीफ का। आप जानते हैं ना शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के। तो जब वो क्लास ईयर 10 में थे 1951 उनकी बर्थ है, सो 1989 जब भी था ये एकेडमिक है 1980 में, तो समझ उनका कार्ड है स्टूडेंट कार्ड, इसमें सब्जेक्ट है इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस ह्यूमैनिटीज हेल्थ वगैरह। तो हर एक सब्जेक्ट में शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस कैसी थी वो ये है। इंग्लिश में उनको 22 मार्क मिले 100 में, मैथमेटिक्स में 20 मिले, साइंस में 19 100 में, ह्यूमैनिटीज में उनको 18 मिले लेकिन हेल्थ में 26 मिले हैं, वेल डन। टेक्नोलॉजी में 27, आर्ट में 21 और फ्रेंच में 24, यानी सारे 20 हैं, 22, 20, 19, 27, 24। तो समझ ये ग्रेड क्या है, एफ एफ एफ एफ सारे फेल। सो ग्रेड था फेलियर का, और एक और ग्रेड जो इन्होंने पाया है वो फेलियर प्लस है, एफ प्लस। थैंक यू सो मच इंडीड, वेरी इंटरेस्टिंग कि उस जमाने में भी समन ग्रेड्स होते थे, 20-20 मार्क का एफ ग्रेड। सलमा अहमद आपने कहा है कि परवीन जी मेरी ओपिनियन ये है, इट इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल टू ड्रेस वल्गरली एट अ पायस ओकेजन ऑफ रक्षा। Across most cultures and faiths demand a standard dress code. समिन हर कल्चर में ड्रेस कोड है हर त्यौहार के लिए, that reflects reverence, humility and solemnity. जिससे पता चल जाता है कि आप कि कितने दिल में आपका कितना सम्मान है आपके रीति रिवायतों में। Wearing respectful dressing honors the occasion of रक्षाबंधन। सलमा very good. The jewelry brand Jiva removed its Raksha Bandhan advert featuring Kriti on 26th of August after facing हाँ मैंने कहा था हटा दिया है ये, yes sir thank you. Models were shown without bindi, आपने कहा है कल्पना, that is why the campaign said if there is no bindi there will not get any business. Okay. सोनल मोदा, रक्षाबंधन के दिन हमें हमारे कल्चर का को ध्यान में रखकर कपड़े पहनने चाहिए, क्यों वजह क्या है? फेस्टिवल्स ट्रू एसेंस लाइज इन लव एंड रिस्पेक्ट नॉट सच एड्स, इट्स अ वेरी पवित्र रिश्ता। बिल्कुल आपने सही कहा है। और अब बात कर लें, हो सकता है आरफा उंगाटा रुंगाई। जी जी
1: Amin, I wonder if you might have Lot ke aaja mere meet.
0: Hai, aa Lot ke aaja. Okay, kar lete hain. Arfa ki farmaish, aa Lot ke aaja mere meet. Wo bhi karte hain, Mukesh hai na. Aap Pyar Ali Bhatia, please play Sataega Kise Tu Aasma. Ye mujhe nahi mil raha. Maine pehle bhi Pyar Ali Bhatia aapse maazrat ki hai. Okay. अमीर अली राणा के जो हैं जो उन्होंने कहना है वो थोड़ी देर के बाद करते हैं, पहले ब्रेक।
2: East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Let's be honest. How many times have you used mobile money already today? Exactly. Maybe you've paid for breakfast, sent money to mum, or paid for shopping. These days, life moves fast, and so does our money. That's why you need a mobile money service that's secure, affordable, and reliable. That's Airtel Money. So you can move money and worry less. This week on Breakfast with Rehmat and Jameel, we want to hear your story. What's one everyday situation where you simply can't do without mobile money? And what matters most to you when choosing a mobile money transfer service? Tune in every day on Breakfast with Rehmat and Jameel. Call. Start with. Then share your answer and you stand a chance to win 3,000 shillings credited directly into your Airtel Money wallet. Airtel Money. Move money. Worry less. On East FM.
2: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
4: East FM.
5: Celebrating your favorite occasion. East FM.
4: Kenya's premier
5: Asian mix.
4: Asian mix.
6: Oh!

0: जी अश्विन दोषी लौट आए हैं, कल के आज आज अश्विन दोषी मुकेश की बरसी है।
1: बरसी है, मैं सुनता हूँ, थोड़ा बिजी हो गया था। okay. मैं सुनता था लेकिन आ नहीं सका, फिर अभी अभी अभी थोड़ा टाइम मिला है तो बस ये अपना फेवरेट गाना है परवीन
0: जी,
1: जिससे वेरी वेरी वेल सॉन्ग परवीन। उस जमाने में जो 50s में ये बहुत पॉपुलर हुआ था या रानी रूपमती फिल्म से आपने लिया है।
0: अच्छा, रानी रूपमती कोई थी ऐसी रानी?
1: यस यस, हिस्टोरिकल मूवी थी, भारत भूषण और निरूपा रॉय वे द प्रिंसिपल स्टार्स।
0: निरूपा रॉय तब यंगर होंगी ना, तब यंग थी
1: या इन द 50s पर जी ये या। और म्यूजिक था एस एन त्रिपाठी, हु वाज बी ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, एंड गीत सभी लिखे थे भरत व्यास ने।
0: भरत व्यास ने
1: भरत व्यास ने कमाल कर दिया है, और म्यूजिक भी बहुत रियली एंटेंटिंग है, और फिल्म हिट हो गई। पर ये गाने गाने के वजह से दूसरे सभी गाने, और ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया है फॉर निरूपा रॉय
0: लौट के आ गया।
1: मुझे मालूम है। और बस ऐतिहासिक मूवी थी पर जी, और ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर दी और हिट बना दी,
0: कर दिया ना काम फिल्म ने।
1: Yes.
0: और यू नो लिसनर्स पर कितना, नहीं लिसनर्स नहीं, व्यूअर्स पर कितना डिपेंड करता है।
1: Yes,
0: अच्छी फिल्म को बुरा बना दे और बुरी को अच्छा,
1: बुरे को बुरे।
0: ये इनका है।
1: Yes, yes. Sometimes they accept this, sometimes they accept something totally opposite.
0: Right, बिल्कुल।
1: Yes, yes, yes, होता है पर
0: जी। तो फिर उम्मीद है अश्विन के आप सुनते रहेंगे।
1: मैं सुनता हूँ, मैं अभी अभी मेरे पास टाइम है।
0: ठीक है, ओके जी। समीर अश्विन दोषी से बात हो रही थी। अब अमीर अली राणा कहते हैं, परवीन जी अबाउट द कंट्रोवर्शियल एड, दिस इज अटेंशन ग्रैबर। समझ, ये सिर्फ लोगों की तवज्जा पाने के लिए, वरना कौन बनाता है रक्षाबंधन का विज्ञापन एक कुत्ते के साथ? ये तो बेगैरती है समीर, इनको तो कुछ करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस डायरेक्टर के खिलाफ। आपने कहा अमीर अली राणा, इट वॉज एन अटेंशन ग्रैबर, लेट्स फेस इट, द कंपनी दैट कमीशन दिस वॉन्टेड टू गेट अटेंशन एंड आई थिंक द कंपनी अचीव्ड इट्स गोल। जी, उनको तवज्जो चाहिए थी और उनको मिल गई। वी आर टॉकिंग अबाउट मिशन एकम्प्लिश्ड, सही कहा है आपने। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रजिंदर प्रसाद जी। डॉक साहब
2: नमस्कार। प्रवीण
0: जी नमस्कार, बताएं डॉक, आपको क्या लगा जब आपने देखा ये?
2: बहुत वाहियात, ये ऐड बताई गई है और ये बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर अगर वो बनाने वाला जो भी था, ये बंदा डायरेक्टर था या एक्टर था कोई भी, और जिस एक्ट्रेस को लिया गया वो तो पहले ही ऐसे लिबास के लिए मशहूर है वो। नंबर टू, अगर अच्छा होता कि अगर उसने अपनी बहन को लेके और खुद की कि बहन ऐसे लिबास में उसको रक्षाबंधन करने के लिए आई, उस साथ में कुत्ते को और को भी वो राखी बांध रही है। पर मैं एक छोटे से बात बताना चाहूंगा अपने ननिहाल के, कि मेरे नानी की डेथ 1940 में गुजरांवाला में हो गई थी, वो बच्चा हुआ था। तो मेरी मामी जी उस समय 12 साल की थी और उन्होंने उस समय 5 बच्चों की जिम्मेवारी निभाई।
0: अच्छा,
2: 12 साल की एज में, 12 साल की एज
0: में।
2: और वो फिर ये पाकिस्तान बन गया तो ये भारत में आ गए, तो मामा जी ने मतलब कि मेरे मम्मी की शादी कन्यादान मेरा मामा मामी ने किया था खुद ही, क्योंकि नाना जी घर पे रहते नहीं थे तो उन्होंने शादी की। 2002 में दिवाली से कोई 8-10 दिन पहले वो मामा जी की डेथ हो गई, और वो परपोते थे उनके घर में, मतलब ही वाज ग्रेट ग्रैंडफादर।
0: ओके,
2: तो दिवाली के दिन उन्होंने मेरे मामी जी ने 1.25 किलो गुड़ और 5 दिए मेरी मम्मी को बेचे।
0: अल्लाह,
2: इनके घर के अंदर अभी अफसोस शोक चल रहा था, ये शोक हमारे घर करके तो अपने घर के शगुन का। फिर दिवाली के 2 दिन के बाद भाई दूसरा की बहने अपने भाई को टीका वो लगाने के लिए जाती है, वो ये जरूरी है ये
0: जी।
2: तो मम्मी मेरे नहीं गए, कि भाई जब मर गया तो अब मेरा जाने का कोई काम नहीं है वहां पे। तो मामी जी ने अपने पोतों को बाइक लेके बुलाया कि उसको घर से बुलाओ या अपनी वो शॉप पे होंगी, कहीं शॉप पे ऊपर होगी वहां से लाओ, कहीं भी होगी, या तो जीत के घर जाके ना छुप गई हो कि मैंने। उन्होंने ढूंढ ढांड के जो मम्मी को पहले लाए और दोपहर के दो बज चुके और सभी मामी जी के बेटे पोते पड़पोते भूखे बैठे थे कि सबसे पहले मम्मी उनको टीका लगाएगी, उसके बाद वो पोतों को पड़पोतों को कि ये इस घर की बेटी है। तो सभी को भाई मतलब वो मैं उस समय वही था, सभी को बोला मामी आपने अपने से ढक लो पुआ सब, ये तो आड़ी पुआ नहीं है, ये तो आड़ी प्योरी पुआ है, तो आड़ी दादे की पुआ है, अपना से टको तो पुआ बाबा जी टिक्का लगा के तो हर एक वो भावी जिन को जितने भी पैसे है अपनी पुआ दो पुआ खा लेनी जानी चाहिए। अफसोस के दौरान भी उन्होंने इस कल्चर को मेंटेन रखा और मैं मान रहा हूँ कि ऐसे ही लोग कहाँ है वो जो बंद की ये अपने दिन त्योहार की जो मान्यता है तो उसका मूल्यांकन करते थे, उसकी इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। और तो और पंडित प्रवीण जी अगर कोई उनके मोहल्ले में के अंदर कोई भाई के गांव की लड़की कोई ब्याही है या किसी और की लड़की है तो उसको भी बुलाया जाता था घर पे कि आके पीता लगाओ या राखी बांधो। इस पवित्र त्योहार की पवित्रता को भंग करने का जो उसने ये बंदे ने दोष किया है पाप माना जाना चाहिए कि ऐसे आप किसी के बल्कि खुशियों के त्योहार का मजाक उड़ाते हो तो शर्म आनी चाहिए इस बंदे को। और कहने को तो ये भी कह सकते पता नहीं कौन से कोख से ये बंदा पैदा हुआ होगा कि किसने ये ऐसा किया, मतलब ये पाप है प्रवीण जी। तो पवित्रता कोई किसी का भी त्योहार हो या दुश्मन का भी त्योहार हो उसके अंदर भी खुशी ही मनानी चाहिए।
0: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कहकर गए हैं समय अपनी परंपराओं की आप इज्जत नहीं करेंगे ना ही करवाएंगे, आपकी जिंदगी खोखली हो जाएगी। ओके, इट वाज अ बिग ट्रेजेडी कि पाक भारत जब बंटवारा हुआ उसके बाद इजाजत नहीं हुई, सरहदें और दीवारें खड़ी कर दी गईं, पर काश वो सरहद खुली होती और ये रस्में जिंदा रहती। चलिए आगे चलते हैं, थैंक यू।

0: Tor Asha Boslika, what a duet. Enjoying the voice of Mukesh Sanakana, glad. Ranjan Vinod, thank you for playing the evergreen old songs. Acha, bahut shukriya. Ab chalte hain Mona Patni. Parveenji, this is a very wrong statement of Kriti that it's individual's choice to wear. Aap individual hain, aapko dekhne wale million individuals हैं क्या वो आपको इस अवतार में देखना चाहते हैं या किसी और में ये भी तो आपने देखना है आप सिर्फ अपने लिए तो नहीं ना कपड़े पहनते जग के लिए पहनते हैं ना My opinion is that whatever level we have become modern with our lifestyle but we shouldn't forget our roots are still Indian culture every occasion we have to dress so well why this vulgarity कहते हैं कि क्यों इस तरह की बेशर्मी को लेकर आए अपने त्योहारों में द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग आवर कल्चर समझ ना आपकी तो परंपरा को देखने सारी दुनिया के लोग आते हैं तो अगर आप ही उसको कर देंगे नापाक एंड दे ट्राई टू एडॉप्ट व्हाट वी आर डूइंग मोना पटनी आई एग्री विद यू बिल्कुल सही आपने कहा है सोनल Sonal ne kaha, Raksha Bandhan is a special festival that celebrates the loving bond between brothers and sisters. Wearing traditional clothes, of course. Aapko har tehwar ke liye, aapko kapde pehenne padte hain, munasib. Munasib, gair munasib nahi. Raksha Bandhan, pakdi, aapne raksha jo hai, wo dhaga pakda hua hai ek haath mein. दूसरे में कुत्ते ने मुंह खोला हुआ है तीसरे ने आपने लिबास मगरिब का पहना हुआ है वेस्ट का पहना हुआ है और ट्रेडिशन जो मना रही हैं आप वो है बिल्कुल ईस्टर्न ये कहाँ की बात है कहाँ का ये नज़र नहीं आता कोई लॉजिक वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स मेक्स द सेलिब्रेशन मोर फेस्टिव एंड मीनिंगफुल सोनल मोदा बिल्कुल It also helps us respect and preserve our cultural heritage and pass our traditions to the next generation. अच्छा सोनल ये next generation की आप बात कर रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि कृति स्नान जैसे जो लोग हैं वो अगली generation को ये tradition रक्षा की pass on करते होंगे ये समझ कर के हमने तो ये इतना सा लिबास पहना है उम्मीद है कि अगली नस्ल कुछ भी नहीं पहनेगी यही लगता है ना फिर इससे तो यही आप डिड्यूस कर सकते हैं रूपल लिसनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया क्या बात इतनी दूर आप चली गई हैं रूपल और बताकर नहीं गई इट्स वेरी लाउड एंड इट्स सो क्लियर रूपल बहुत शुक्रिया और कल भी जरूर सुनिएगा रक्षाबंधन मिलकर बनाएंगे And to all the people in Australia जो आज सुन रहे हैं हमारी good wishes East FM की ठीक है अब यहाँ चलते हैं भरत गंगाराम लंदन परवीन जी वो मधुमति का गाना और मिस्टर अश्विन दोषी से जो जानकारी मिली है क्या मजा आ गया क्या संस्कार आते हैं ओके बहुत खूब लेकिन भरत गंगाराम आपने ये नहीं बताया कि वो रक्षाबंधन का एड कैसा लगा आपको
1: ईस्ट ईस्ट एफएम केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स ऑल द ग्रेट सॉन्ग्स दैट मेक योर डे

0: FM, Kenya's premier Asian.
1: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
2: Deputy President Kithure Kindiki has called for deep reflection on Kenya's 16-year journey under the 2010 constitution. Speaking at KICC during the Katiba 16 celebrations, Kindiki noted that this milestone offers a vital opportunity to evaluate how far the nation has traveled in fulfilling the document's promise of building a modern, democratic and united nation.
3: These foundational articles defines us as a multicultural society determined to live together as an indivisible nation. It is a good time for us to reflect on how far we have advanced in forging tolerance in our diversity.
2: A section of ODM aligned MPs from Nyanza has rejected former Deputy President Rigathi Gachagua's efforts to win political support in the region, accusing him of portraying himself as a community ally. Led by SEMA Member of Parliament James Nyikal, the lawmakers said Nyanza will not be treated as a political trophy to be captured by ethnic brokers ahead of the 2027 general election. They said the region will make decisions based on its interest, leadership and democratic convictions.
4: While Mr. Gachagua is entitled to pursue his political ambitions and seek support in every part of Kenya, he must understand that Nyanza is neither politically naive nor afflicted by collective amnesia.
2: Kotu has cautioned former Deputy President Rigathi Gachagua against making unsubstantiated claims that the Independence Electoral and Boundaries Commission's election technology procurement process was designed to favor a South Korean firm. Kotu Secretary General Francis Atwoli warned that such allegations could trigger violence, threatening the livelihoods of workers, women and children. Atwoli said the remarks could also lay the political ground for rejecting the 2027 election results in advance by undermining the credibility of the Independent Commission without evidence. Business in building materials in Tezo Town, Kilifi County, is reportedly improving following the start of the affordable housing project. The project site supervisor in the area, Orumoe Lengal, says construction stones and sand are increasingly being purchased locally, helping to boost business in the area.
5: Material zinatupika kwa site hii inatoka tu within the locality kama mawe, mchanga. Kwa kifupi, mradi huu imesaidia sana katika hii ukuaji wa hii eneo la Tezo. Ukiangalia kwa ukubwa, Tezo yenyewe imekuwa tangu project hii ilipolaunchiwa.
2: That's the news update on East FM.
6: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
7: मेरे साथ एक और घंटा और हम बात करें लिबास की. एकम अपनी बर्थडे मना रहा है लंदन में और दादी माँ यहाँ पर हैं और उन्होंने मैसेज भेजा है कि एकम की बर्थडे मैं बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वो वहाँ मना रहा है. दो साल का हो गया एकम और उनको सुनाती हैं कई बार बेमिसाल अंदाज. ओके रूपल सुन रही हैं प्रोग्राम, मुझे पता चल गया, उनका नेक्स्ट मैसेज भी आया है. और जतेंद्र
8: जी, मैं शॉर्ट विच आंसर कर दिया कि ओह जिधर पोस्टर बनाया ना उन्हें ना पवित्र ना पवित्र है कृष्ण रहेगा रक्षा बंधन और ही ना इंसल्ट की दिया उधर जोक बनाया वाह. थैंक यू जी.
7: इट इज एन इंसल्ट, पर मुझे समझ नहीं आती कि कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई. समझ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.
9: प्रवीण जी फिर कुछ बोल रही हूँ. प्रवीण जी ये सारा जो किया कराया है ना, ये सारा आपको पता फिल्म इंडस्ट्री की जो नई नई यंग बड़ा जैन जी बोलते हैं ना, तो वो जो लड़कियां है ना अपना जिस्म दिखा दिखा के इन्होंने ना फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ना 2,000 करोड़ इसलिए जमा किया हुआ है जो कि हमारी न्यू जनरेशन को भी इन्होंने ही खराब किया हुआ है. मेरे को इसलिए तो आता है कि ये देखो हमारे, ये बताऊं आपको प्रवीण जी, ये भी आपस में ना फूट डालने के लिए ना किसी ने ये काम किया है कि जैसे कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचे. बताऊं आपको, कई बार प्रवीण जी इतना रोना आता है कि हमारे हिंदू त्योहारों या हिंदू लोगों को ही लोग क्यों मतलब टारगेट करते हैं. इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है ऋतु गुप्ता.
7: नहीं नहीं, दूसरे मुल्कों में भी त्योहारों से दूर हो रहे हैं लोग और दूसरे मुल्कों में भी जो लिबास पहन रहे हैं दंग हो गए हैं. जो सीनियर लोग हैं और जो डिसेंट लोग हैं वो दंग हैं. अमीर अली राना, द एक्ट्रेस वाज इन द कंट्रोवर्शियल एड इज सॉट आफ्टर इन इंडिया. सम इन एक मैं आपको बताऊं कि कृति सनोन बड़ी अच्छी अदाकारा है, वेरी गुड एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत जिस्म, लेकिन जो उन्होंने किया है वो अपने लिए भी अच्छा नहीं, लेकिन अमीर अली कहते हैं पांच प्रोड्यूसर्स उसके पीछे भाग रहे हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद, क्योंकि समय उस पर फोकस हो गया है, लोगों ने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, अब प्रोड्यूसर्स उसके पीछे भागेंगे कि हमारी फिल्म में भी आओ और यही करो।
10: हेलो परवीन जी, ऐसी जो मॉडल्स होती हैं वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं और इसके लिए अच्छी खासी रकम भी लेती हैं, पैसे लेती हैं। परवीन जी, ये जो मॉडल्स हैं आपने

0: The Drive with Nimrat.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध.